0: सस्ता।
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड, वित्तीय सेवा को और को परिभाषा।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज, रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: एक्सट्रीम इमेजिंग टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो

0: यसै गरी हामी शिवम सिमेन्टले पनि क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज भन्ने हाम्रो वाचा पूरा गर्दै शिर ठाडो पारिरहेका छौं। सदा सर्वदा शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज।
1: धादिङवासीको लागि खुसीको खबर, टीवीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला आउँदैछ गजरी बजार माछा पुछ्रे बैंक अगाडि। महाकुंभ मेला 2083 साल जेठ 24 गते देखि 30 गते सम्म। तपाईसँग जुनसुकी कंपनी को मोटरसाइकल वा स्कूटर छ, अब सजिलै टीवीएस सँग साट्नुहोस्। आकर्षक फाइनेंस को सुविधा, नया बाइक खरीद में विशेष कैश डिस्काउंट, मन परेको बाइक को निःशुल्क टेस्ट ड्राइभ पनि। आउनुहोस् साथमा नागरिकता र लाइसेन्स लिएर। थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सुन्दर विश्वराल, मोबाइल नम्बर 9848 56 20 88, विश्वराल मोटरसाइकल एन्ड अटो वर्कसप, गजरी गाउँपालिका 1 गजरी बजार, धादिङ। टीवीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला अवसर नछुटाउनुहोस्। मेला अवधि में गजरी पुग्नुहोस्। विश्वराल मोटरसाइकल एंड अटो वर्कसप, गजरी गाउँपालिका 1 गजरी बजार, धादिङ। संपर्क मोबाइल नंबर 9848 56 20 88।